नानक हो परस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न पिखे नेत्र साध किटैल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जेत पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सोजी सुपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए पिन कर्म करत हो वैन हे कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ रह नाम जपावै नानक हो बैसनो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलख होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म है सोधै राम नाम सार रस पीवे उस पंडित का उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमरत बुझै मूल सुख मैं जाने सूल चाहो वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चाहो वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कार कृपा अंतर उर तारे पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग काव कद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सौ कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं ब्योग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक हो पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तन नाव आपे करण करावण जोग प्रभावै सोई फुण होग पसर्यो आप होयन तत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश

शब्द अनेक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होय पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सरो।

हल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करना जोग जो तिस पावे सोई होग खिन मह थाप थापन हारा अंत नहीं किस पारा बारा हुक्मे तार तर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक समय रहया समाई प्राव पावै मानुक गत पावै प्रभावैता पात्र त्रावै प्रभावै बिन सास्ते राखै प्रभावैता हर गुण पाखै प्रभावै

जाको अपनी करे बखशीस, ताका लेखा ना गणे जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बड़ाई। इसका बल नाही सहाथ, करण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई फुण थियो। कभू ऊच नीच में बसै कभू सोग, हरख रंग हसै।

जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो हो दृष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म रह भोजन प्रमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकी हा मुक्त त्यागे सुख पावे तनवंता हो कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे भोल अस्करमान कूपर करे आस पल पीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिणमय होय जाय पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गौर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट करम करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरके को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाए निकट न आवे सर्व की रेण जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कच होए तब इसको सुख नाही कोए जब हे जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानको छूटे सहस खटे लख कोटतावे तृप्त नावे माया पाछे पावे अनेक भोग बिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप रब सोए जो किसके न सो अपने रंग सब ते दूर सब हुके संग भुजे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न भिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहे समाय आप उपदेश समझे आप आपे रचे सबके साथ आप किनो अपने विस्तार सब कज उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक कैसो अपने चलेते आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्र स्वामी गुर प्रसाद किनै वख्यानी सच सच सत सब किना कोट मदे किनै बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप सुंदर पार अनूप

मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिदर लगत को की सब जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तय किसै भूख कवन त्रिवतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपै परबीन तै भेद कतेव कहाँ को चीन जब अपने आप आपुर तारै तो शगन अपशगन कहाँ बिचारै जय अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अछल अशेद अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस को आपै आदेश ते गुण का नाही परवेश जय एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागै चिंता जय अपने आप आपति आरा तै कौन कथै कौन सुनै हारा बो बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपै पहुचा जय आप रचियो परपंच अकार ते गुण में कीनो बिस्थार पाप पुन तै पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछाव ते आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप दोहू पाका आपै धनी उनकी शोभा उन्हू बनी आपै कौत करे अंध चोज आपै रस भोगन नर जोग जिस पावै तस अपन नाई लावै जिस पावै तस खेल खिलावै बेशुमार अथाह गणित अतुल है जो बोलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनै हार आपै एक आप विस्थार जंत पावै तां सिष्टो पाई अपने भाणे ले समाई तुम ते पिन नहीं किछो होए अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जियो आप जाए सच नाम सोही जन पाई सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंतर सब तां कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोय न मारै सो मुआ जिस मनो विसारै तिस तज अवर कहा को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जुग जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपालै जीयन बो भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तसलै मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार।

सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक गुण नाम सुखमणि। सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोदर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा केहा, सो घर केहा, जित बहे सर्व संभाले। वाजे तेरे नाद अनेको असंखाओ, किते तेरे वावनहारी। किते तेरे राग परि सों कहियें, किते तेरे गावनहारे। गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतरु, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे, देवत्या दर नाले।

गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोनिया मन मोहन, सुरग मछ प्याले।

मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हा दै मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज कर दै करे, सब बैरन को आसंग घरे। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाद मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखने हारे, साहिब संसहाय प्यारे। दीन बंदुष्टन के हंता, तुम्हों पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बोतरा, काल पाए शिवजी ओतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जछन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोए गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पल मो भद्ध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी,

सहाय। दुष्ट दोख ते लिहो बचाई सवैया, पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। रामो रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सवैभो भेद कहम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो, सब तोहे बखाने दोहरा। सगल द्वार कौ छाड कह गयो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाज असम।

श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक मन पुरख त्याहे वरदाता, संत सहार सदा बखियाता।

सहस मूर्त नाय एक तो ही सहस पाद विमल नान एक पाद गंध बिन सहस तव गंधे विचल तमोही सब मैं जो होत जोत है सोए तिहद चानन सब मैं चानन होए गुरु साखी जोत प्रगट होए जोत भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरे नाई वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाउ साकत हर साधन जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावे जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे

नानक दासू इहै सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदे अग्रदास।

मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी काट में है, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस में है पाग्यो।

तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जानगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता, अनेकां नूं तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे, तेनू 36 प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नू देव दूत असे उस दे राक्षी फौजा सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं। ते मर्दाने दा रंग पीला पैन लगा, एडियां भयानक शकलां, महाराज अज नहीं बचांगे। ये तो बड़े भयानक मनुख जापदे, बड़े भयानक राक्षस हन। गुरु साहब कहन लगे तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नूं बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। कितनियां हनेरियां आउन तूफान आउन, जिन्हां बूटियां नूं जिन्हां ब्रिशां नूं सुमेर पर्वत दा आसरा है ना, चक्खड़ चाओ ना डोलन, कितने चक्खड़ आ जान ओ फिर बूटे डोलदे नहीं, उन्हां नूं कोई हिला नहीं सकदा। इसे तरह मर्दानिया जिन्हां नूं करतार दा आसरा है, अकाल पुरख दा आसरा है, उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। आहा किथे किथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जाके

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, अज इना देवां नूं ही देहां नूं ही देवत्यां दी नगरी बना दिता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेठे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

गुरु अंगद की ते पुकारे, गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हठ के नाम विचारे।

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

0: बगासु मेंती कृपा करसु
1: बेनती शर बेनती बेनती हर कृपा करसु बेनती
2: निरी रे रे निरी रे रे

जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें प्यावो। चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्टि महासुख होए हरस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तिप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग, परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधन निबलाग। बड़ पागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु हुयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख परम गया। इच्छ पुनी सरदा सब पूरी राव रहा सत्संग हजूरी, जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भगति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े। गुरु पूरे तते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साधन संत करो इहो काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार बिन भगति तन होसी छात। सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर यही सुहाओ। नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस्त दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए। प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण अतार। जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी सोभा तनवंत हृदय बसे पूजन गुरुमंत। साध संग प्रभति होनी।

बढ़ली सरोही। नमो श्री प्रभक्ति बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां की पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र की पूजा उचारदे ने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र की पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, नमो श्री भगौती बडैली सरोही, नमो श्री भगौती।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती, नमो दीप ज्वाला मुखी जो बलंती, नमो दीप ज्वाला मुखी जो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बान गंगा तरंगी, तेरे साम है मोक्ष दाती अपंगी, फिरे शाम है मोख दा

खंडो खड़ग, अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुक तवर आते अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुमक तवर अर्पे सैफ सरोही सैफी, यही हमारे पीर सैफ सरोही सैफी, यही हमारे पीर तीर तू ही सैफी, तू ही तवर तलवार, तीर तू ही सैफी, तू ही तवर तलवार, नाम तुहारो जो जमे

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त
0: ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर सर भैया, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। सर्व करना

0: देखो खालसे की फतेह चार कूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चलाओ सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण कराओ वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे।

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे पाओ, देख खालसे को तुर्क जाएंगे
1: पाओ। एक चले
0: सिंह झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौ झुकाए। सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदय।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सतगुरु प्रसाद, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. एंड व्हेन आई ट्रांसलेट गुरबानी इनटू इंग्लिश, आई ट्रांसलेट इट लाइक दिस. एक ओंकार, आई नो दैट आई एम वन विद गॉड एंड गॉड इज वन विद मी. सतगुरु प्रसाद, दिस इज माई ट्रू गुरुज गिफ्ट टू मी टू हैव दिस एक्सपीरियंस. द एक्सपीरियंस दैट आई एम वन विद गॉड इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई गुरु. So when you say Ek Onkar Sadguru Prasad, Ek Onkar Sadguru Prasad, it's the most powerful thing because it reminds you who you are, that you are one with the infinite, that everything is Prasad, everything is Guru's gift to you, even the painful things. It's all Guru's gift. And if anything that happens to you, you can say Sadguru Prasad, what problem do you have? Huh? You don't have any problem at all.

परम सम्मानीय गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब, श्रद्धा साहब, धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत ही श्रद्धा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामने है, हक असी जताते हैं, तो फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने कहो जहा खालसा साजिया लिखिया है, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंजक नायन के। गुरु नानक जी का की प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले विच भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ना लाया, अनंतपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने

सास ग्रास भक्ति करने वाला अज अमृत वेले उठे इशनान कीता है, क्योंकि नेत्रा तो हीन है। जो सैर करन निकलिया ते रस्ता ही गुरु दरबार दा भुल गया। बाणी पढ़दिया नित